0: आज तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: Leica Radio Network, across London, Manchester and the Midlands.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
2: साफो ट्रेवल, at all protected.
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
4: Leica Group par har raat ki yahi reel. Purane magar sada bahar geet.

नाजाची गप्पाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजर वाली वो गोरी गोरी गोरी वो गोरी हक पाली जो जहां के वाली मिल जाए तो फिर वक्त मिल जाए तो फिर एक चाची प्याली चाय बनाने वाली एक चाची प्याली एक

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए अखरी

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीरथ ना।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

राहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरासा।

अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Leica Gold, traffic and travel.
2: Good morning, this is Cameron McGarvey here. We'll start at Blackwall on A1261 Aspen Way is currently closed in both directions due to an accident from East India Dock Road Tunnel towards the Prestons Road, and a diversion operation for a number of buses as well. To Wealdstone and Lockett Road, that's also blocked in both directions due to burst water main from Byron Road to Thompson Road. A13 Newham Way at Canning Town, we've got traffic queuing already at the Canning Town flyover, and public transport Jubilee Line, we've got the late finish of engineering work and we've got reported severe delays on the Jubilee Line today. That's your latest traffic and travel.
0: Yeah, like a gold.
3: Like a gold.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
1: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: September महीना माँ हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
8: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
9: ए तमे स्त्री अमने ऐसे रहे पुरुषों नाम खोटा होगो वालो बंद करो।
7: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लेने आवी रहे छे। सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जान माँ। हवे राइसलीव, पॉटर्स बार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन माँ। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने 07931534270। नाटक नु नाम याद रखो।
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
11: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
10: डेजर्ट सफारी,
11: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
10: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
11: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
12: साफो ट्रेवल at all protected.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
16: Lights on, shutters up, staff ready.
15: But today's customers don't start on the high street.
16: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
15: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
16: They walk into your competitors.
15: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
16: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
17: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
0: Leica Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर। Alexa पे बोलो play Leica Gold और online सुनो LeicaGold.com पे।
18: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हाल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के।

0: Greater London. This is Cajal on Breakfast. Leica Gold, traffic and travel.
1: Good morning, this is Cameron McGarvey here. First of all, to the A1261 Aspen Way at Blackwall. We've got that currently closed in both directions due to an earlier accident. Very slow this morning, congestion to a mile past the Canning Town flyover. Lockett Road at Wealdstone, we've got that road blocked both directions from Byron Road to Thompson Road. That's where the burst water main. And then the M25 anti-clockwise got heavy traffic at the Dartford Tunnels, adding around 50 minutes to your journey there already. Public Transport District Line, we've got reports of a faulty train. No service on the district line between Edgware Road and Earls Court, and still got minor delays reported on the Jubilee line. That's your traffic and travel.
2: Celebrate 140 years of innovation at the Mercedes-Benz Platinum Star event from the 6th to the 10th of August. Whether you're considering electric or combustion, unlock exclusive in-store savings across the range. And that's on top of our existing offers, like the A200 AMG Line Executive Hatchback, now available from £299 a month. Book your appointment at your local showroom today. PCH offer ends 30th of September. Advance rental £7,411. 4-year lease. Subject to status and availability. T's and C's apply. Mercedes-Benz Finance.
0: This is Leica Gold. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colours TV.
3: I hope me janera hum log waqt par pahunche.
4: 073-00-99-8823. Note kiya? Kitty party? Business meeting? Corporate event? Family occasion? Bas! WhatsApp kare Godfather and Co. Bar and Kitchen Co. Service? Excellent. Food? Amazing. Aur experience aisa ke aap khud bhi aayenge aur dusro ko bhi recommend karenge. Vivek House, Watford. Book on WhatsApp 073-00-99-8823.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन. लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं. श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444. Our line. Be part of a historic grand opening.
7: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
6: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
7: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
6: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
3: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
4: Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.

0: काजल्स मॉर्निंग मंत्रा प्रेजेंटेड बाय मंत्रा हॉलीडेज योर फ्रेंडली हॉलीडे पार्टनर फॉर यूके यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस फॉर योर मेमोरेबल हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड बजट कॉल 0203-773-633 टू बुक योर ड्रीम हॉलीडे
1: लाइका गोल्ड
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: Two businesses,
5: same town,
4: same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757 Greens by Daniel Prime Location
6: High Appreciation
7: In Dubai
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं
9: इल्फर्ड अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए
10: बीकानेर वाला परंपरा भी
11: फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड गैंसल इल्फर्ड IG26HA कॉल 07555-50-6015
12: क्रिएटिव टीम इवेंट्स एंड पीस नेशन UK ब्रिंग्स टू यू द किंग ऑफ सूफी म्यूजिक लखविंदर वडाली टू लंदन एंड बर्मिंघम दिस अक्टूबर फॉर स्पॉन्सरशिप इंक्वायरीज कॉल 07959-250-376
13: Sonatours.co.uk 13 days Vietnam and Cambodia departures every month September to December. Get 100 off if you book this month. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.
16: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
3: अक्रॉस ग्रेटर लंदन। दिस इज काजल ऑन ब्रेकफास्ट।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: है लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: 0730-99-8823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-99-8823।
3: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Dad,
5: what's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
9: high appreciation
8: in Dubai.
10: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
11: बीकानेर वाला परंपरा भी।
12: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT। कॉल करें 0748768785।
13: 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit Sona tours.co.uk or call 0208-951-0111.
14: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime. On the Leica Radio Network. Gold Breakfast with Kajal.

0: 6 o'clock precisely.
1: Today in the UK, BT will protect millions of homes against scammers.
2: Threat neutralised.
1: Keep thousands of family video chats running smoothly.
3: Hi, Nana.
1: And answer every call for support from the UK and Ireland.
4: Okay, all sorted.
1: Switch to broadband you can rely on, with advanced security included as standard.
0: At the third stroke, the time from BT will be brilliant.
1: BT, behind brilliant things.
5: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
6: कैसे बताएं वेदर यार, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ये हेडफोन अलग हो गया। कोई नहीं, इस हेडफोन को अब क्या बनाएं, फोर हेडफोन बना लेते हैं। तो मौसम का हाल बता देते हैं। वेल टुडे इट विल बी कूलर डे। हाँ, पिछले दिनों की जो गर्मी सता रही थी ना भाई, ऊपर बात करके गर्मी कुछ कम करवा ली है, बट स्टिल वार्म तो रहेगा दिन। There will be areas of cloud and a few showers are expected. Midland में भी और London में भी। London में वैसे टेम्परेचर आज 25 डिग्री तक ही जाएगा, जबकि Midland में ये 22 डिग्री तक सिमट कर रह जाएगा।
7: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
8: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: गुड मॉर्निंग। आइए और जूतों समेत हमारी महफिल में शामिल हो जाइए। मेरा मतलब जूतों समेत हमारे दिल में उतर जाइए। बुधवार है आज। वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 5 तारीख। दिन कितना तेजी से गुजर रहे हैं। अभी साल शुरू हुआ था और देखना अभी ये साल जाता हुआ नजर आएगा। अरे साहब उम्र जा रही है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, पल पल छिन छिन या क्षण क्षण भाई कैसे उम्र भाग रही है। आइए एक एक लम्हे का मजा लें। माय नेम इज रवि शर्मा, मनोरंजन लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। और बहन भाइयों आप सब की ओर से पहले तो कहता हूं थैंक यू काजल, और अब स्वागत आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया में। भाई आज बुधवार है और बुधवार का ये विचार है, ये लोगो है क्या?
1: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
0: लेकिन साहब किसी दूसरे पर नहीं, अपने पर हंसिए, अपनी बीवी पर हंसिए, हिम्मत है तो। पत्नी ने आज घर से निकलते हुए वार्निंग दे दी थी, कह दिया था कि नित नई साड़ियों की मुझको कसम, तू मुझे लिपस्टिक से भी प्यारा है, मेरे फैशन की लाज है तुझसे, तेरी वेजेस का ही बस सहारा है, आ मेरी जान आके बर्तन धो ले, मैंने कितने प्यार से पुकारा है, थक गई लेट लेट कर सारा दिन, अब से पूरा किचन तुम्हारा है। कितनी अच्छी है।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: Travel Hub.
3: At all protected.
2: Leica. Leica Gold. Part of the largest Asian commercial radio network in the UK.
5: ये क्या कह रहे हैं जी? लोग जोरू का गुलाम कहें तो कहें, अब तुम जैसे भी हो, अब तू जैसा भी है, हमारा है, बिल्कुल हमारा है। थक गई लेट लेट के सारा दिन, अब ये पूरा किचन तुम्हारा है, आ आके बर्तन धो ले, मैंने कितने प्यार से पुकारा है।
0: तो क्या है, नहीं क्या है भाई, अपने घर में काम सभी करते हैं, आप कोई दिखा के नहीं करता है, भले ही पर्दा गिरा के करते हैं, लेकिन काम सब करते करना होता है। वैसे भाई बता दूं आपको कि पत्नी बड़ी क्या कहते हैं उसको, पतिव्रता हैं, और पतिव्रता का मतलब उन्होंने बताया है।
5: हाँ जी, पतिव्रता वो होती है, पतिव्रता का मतलब मुझे मेरी माँ ने समझाया था कि बेटी वहाँ जा कर के पतिव्रता बन के रहना, पतिव्रता वो होती है जो पति को बरते, जितना ज्यादा बरतोगी उतनी ही ज्यादा पतिव्रता होगी।
0: लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, बस एक ही है तो फिर अरबों में एक है।

0: पति पत्नी में प्यार बहुत लगता है, हर दिन करवा चौथ लगता है। इतनी सेवा, इतना काम। देखिए, ये कपिल भाई ने भेजा है अपना अनुभव वाटफोर्ड से। लिखते हैं कि पति दारू पी के रात को देर से घर पहुंचा और जाके देखा तो भाई दरवाजे पे बीवी खड़ी थी झाड़ू लेके, और उसने जाते ही हाथ पकड़ के कहा, अरे ये इतनी देर तक काम करती रहती है, झाड़ू लगा रही, तू ऐसा कर, कितना काम करेगी तू, ला ये झाड़ू मुझे दे, मैं लगाऊंगा सारे घर में झाड़ू, रात के 2 बज गए हैं, सोना नहीं है क्या, है कुछ तो अपना ख्याल किया कर यार। बीवी के हाथ से झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने लगा, बीवी की आंखों में आंसू आ गए। रुलाएंगे क्या पगले। खैर, रखना चाहिए भाई, खैर मैं तो रखता हूँ, अपनी बीवी का रखता हूँ, किसी और की का नहीं, अपनी बीवी का, सबको रखना चाहिए। ये कपिल कह रहे हैं कि मैं तो रखता हूँ जी, अपनी बीवी का भी रखता हूँ, दोस्तों की और पड़ोसियों की, सबकी बीवियों का ख्याल रखना चाहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लौट आइए हकीकत की दुनिया में, वही हंसना हंसाना तो चलता रहेगा, ये बातें बनाना चलता रहेगा, फिलहाल तो पैसे पहुंचाना ये काम जरूरी है जब रेट अच्छा चल रहा हो। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, रेट अच्छा है, अभी मौका है, पैसे भारत भिजवाना चाहें तो 1 पाउंड के बदले दे आर गिविंग 127.85 रुपीज। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Like a gold.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: वेरी गुड मॉर्निंग भाई. हम आ गए हैं अब खबरों के समय के नज़दीक और यहाँ एक सवाल उठ रहा है कि ये सूखा कब तक चलेगा, क्योंकि बारिश न होने की वजह से कल थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, पर जैसे वो चिढ़ाने के लिए कुछ बूंदें गिराई हो भाई आसमान ने. और आज भी संभावना तो जताई जा रही है, लेकिन वो जो होज पाइप पर बैन है और वो जो घासों का रंग देखा आपने, घास गार्डन में जो हरे रंग की हुआ करती थी अब एकदम सफ़ेद हो गई है, बिल्कुल डेड. पर इसके अलावा फसलों को जो नुकसान हो रहा है उस पर चिंता जाहिर की जा रही है. यहाँ पर ब्रूटल हार्वेस्ट कुड बी वर्स्ट ऑन रिकॉर्ड, हियर इज व्हाट इट मींस फॉर यूके फूड प्रोडक्शन. भाई इस पर लंबी रिपोर्ट जो है वो डिस्कशंस में है और चिंता का विषय तो है. और क्या क्या है आज के समाचारों में, लेट्स फाइंड आउट. लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए. हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से वार्निंग दी है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत जल्द खुल जाएगा वरना ईरान पर बहुत जोरदार हमला होगा. ये बात ऐसे वक्त में कही गई है जब किसी समझौते की उम्मीद के बीच तेल की प्राइसेस 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गई हैं. ट्रंप ने ये बातें फॉक्स न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कही हैं. वहीं अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर जाने वाला दक्षिणी रास्ता, साउथ का जो रास्ता है, इंटरनेशनल जल मार्ग से गुजरने वाले सभी कमर्शियल जहाजों के लिए खुला हुआ है. इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि ईरान से बातचीत में तरक्की हुई है और उम्मीद है कि इस सप्ताह से ही तेल और दूसरे सामान की समुद्री ढुलाई, समुद्र के रास्ते ढोना फिर से शुरू हो जाएगा. भारत से आने वाली खबरों में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है. उन्होंने कहा कि 7 साल पहले इसी दिन यानी 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A इतिहास बन गए, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक अध्याय शुरू हुआ है, एक नया चैप्टर. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, शिक्षा, हेल्थ सर्विसेज, खेल और कई क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट. चाहे महिलाएं हों या हाशिए पर रहने वाली कम्युनिटीज जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से परे रखा गया था, वे अब भारत के संविधान के पूरी तरह से लागू होने की वजह से सशक्त हुए हैं. आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया है. उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि 7 साल बीत गए हैं लेकिन हम ना तो भूले हैं और ना ही हमने मौजूदा हालात से समझौता किया है. उन्हें स्वीकार करना दूर की बात है. उन्होंने कहा मैं और मेरी पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ भी किया गया है, जिससे हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं और हमारी पहचान पर खतरा पैदा हो गया है, उसे पलटने के लिए प्रतिबद्ध है. आपको याद दिला दें कि भारत की केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया था. चांद से टकरा सकता है स्पेस एक्स के रॉकेट का एक टुकड़ा. ये टुकड़ा लगभग 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऑर्बिट में घूम रहा है. ये फाल्कन 9 स्पेसक्राफ्ट का ऊपरी हिस्सा है जो लगभग 5 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा है और इसका वजन कम से कम 4000 किलोग्राम है। अब अमेरिकी जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसके अनुसार ये टक्कर लगभग 7:35 BST, क्षमा कीजिए 7:35 ब्रिटिश समय के अनुसार और 12:35 पर भारतीय समय के अनुसार हो सकती है। जानकारों का कहना है कि इसे धरती से बिना किसी उपकरण के नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन जिनके पास हाई क्वालिटी टेलीस्कोप हैं वे चांद की सतह से निकलती हुई चमक देख सकेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइल्स से हमला किया है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 22 लोग जख्मी हुए हैं, यूक्रेन के अधिकारियों ने जानकारी दी है। यूक्रेन के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा है कि दुश्मन एक बार फिर कीव पर जबरदस्त हमला कर रहा है। मंगलवार की देर रात हुए हमले के दौरान घंटों तक सायरन बजते रहे और शहर के भीतर और बाहरी इलाकों में कई मिसाइलें गिरने की खबर आ रही है। भारत में मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा बाई इलेक्शन में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दतिया जिले की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल इकाई को तत्काल प्रभाव से फौरी तौर पर भंग कर दिया है। पार्टी ने कार्रवाई बाई इलेक्शन नतीजों की समीक्षा के लिए गठित की गई एक समिति की सिफारिश पर यह किया है। ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका ने गाइडेड मिसाइल्स का अपना लगभग सारा ग्लोबल स्टॉक इस्तेमाल कर लिया है। ये जानकारी बीबीसी के मुताबिक जो है जारी की गई है। बताया गया है कि अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में खास तौर पर अपने लगभग सभी आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया था। समाचार एजेंसी ने पहले रिपोर्ट दी थी कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन में अपनी लगभग सभी लंबी दूरी की मिसाइल्स को इस्तेमाल में ले लिया है। और आखिर में यह खबर कि ट्रंप के दौरे से पहले उनके गोल्फ कोर्स के पास से एक हथियारबंद युवक को गिरफ्तार किया गया है। उनके अपने गोल्फ कोर्स के नज़दीक एक जो है ये हथियारबंद युवक पकड़ा गया है। कैलिफोर्निया में अधिकारियों ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्राइवेट गोल्फ कोर्स के पास से इस शख्स को अरेस्ट किया। ट्रंप वहां पर फंड जुटाने के लिए आयोजित एक डिनर में शामिल होने वाले थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि रेंचो पोलोस वर्डेस में ट्रंप के नेशनल गोल्फ कोर्स से 38 साल के जेनिन जॉन टेले को अरेस्ट किया गया है और उसके पास से एक पिस्तौल और गैर कानूनी गोला बारूद बरामद किया गया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
3: जर्नलिज्म की दुनिया से निकलकर अब लौट आइए संगीत के संसार में, गीतों के विस्तार में और आशा भोसले व किशोर कुमार में कितना टैलेंट भरा है, जरा मजा लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, दिस इज लाइका रेडियो नेटवर्क, आई एम रवि शर्मा।

0: tasty track of the hour sponsored by Coca Noodles is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: This is Like a Gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और भाई साउथ ऑल ट्रेवल का वो संदेश आप तक पहुंचा दें हम कि FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. वो कहते हैं कि भाई जम के करो, खूब यात्रा करो दुबई की. कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पिटेटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410. At all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Yeah, like a gold.
4: Like a gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 02087828833 और विजिट TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस.
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट TravelHubWorld.com.
6: Search is changing.
7: Customers aren't just using Google anymore.
6: They're asking AI.
7: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
6: One business, one recommendation.
7: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
6: Will your business be the answer?
7: Or the one that got left behind?
6: The future of search has already started.
7: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
6: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934. Start to

0: is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: LemFi की रेट्स नोट कर लीजिए भाई, एक पाउंड के बदले डिफरेंट करेंसीज में जो रेट चल रहे हैं, एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में 128.18 रुपए मिल रहे हैं। यस, 128.18 रुपीज। पाकिस्तानी 374.11, श्रीलंकन रुपए 451.61, बांग्लादेशी टके 168.51 एंड अफगानी 88.18.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold Rate भी सुन लीजिए भाई, the gold is trading at the rate of 99.37 pounds per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
11: यू नो द क्लीन फ्रेश फीलिंग after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
14: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
15: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
14: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
16: अटेंशन, द आईटेक देसी इंडिपेंडेंस फूड फेस्टिवल एंड ट्रेड वीक इज ऑन फ्रॉम द 3rd टू द 9th ऑफ ऑगस्ट एट आईटेक कैश एंड कैरी साउथॉल विद अनबीटेबल होलसेल डील्स ऑन राइस, डेयरी, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203-393-5225. iTech Wholesale, open 24/7. Everything your business needs, all under one roof.
3: The Ravi Sharma Show on Leica Gold.
1: हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा किशन थे कभी नाम हमारे, दोहरा ले आओ वो पल प्यारे प्यारे, दोहरा ले आओ वो पल प्यारे प्यारे, क्योंकि बहाने से मिलते हैं फिर से सितारे।

0: भी होगी, मैं बता दूं आपको, बट स्टिल रादर वार्म। देयर विल बी एरियाज ऑफ क्लाउड एंड अ फ्यू शावर्स अराउंड इन द मॉर्निंग बिफोर इट टर्न्स ड्राई कंप्लीटली। आज टेम्परेचर वाइज लंदन में 25 डिग्री सेल्सियस और मिडलैंड में 22 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री इन लंदन एंड 22 इन मिडलैंड।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर गोल्डन गीतों का खजाना लाइका गोल्ड रेडियो आपको स्वागतम कहता है। माय नेम इज रवि शर्मा और ये कार्यक्रम लेकर मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। आइए सुनते हैं थॉट फॉर द डे, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें साउथ हॉल से प्रसाद वाले राजेश जी ने भिजवाया है और इसमें सहयोग भाई हमारे विपुल जी का भी, विपुल सिदानी, थैंक यू वेरी मच। क्रिस, श्याम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो चिंतन में सहयोग देते हैं। आज का चिंतन एक गंभीर विचार है भाई। बातचीत में कभी कभी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं कि फला चीज बिल्कुल मिट्टी के भाव मिल रही है, यानी बहुत सस्ती मिल रही है, पर मिट्टी को इतना सस्ता कैसे मान लेते हैं हम? मिट्टी इतनी वैल्यूएबल है, ये आज का चिंतन साबित कर रहा है। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू विपुल भाई। एक बूढ़ा किसान रोज अपने खेत में जाता था, मेहनत करता और कभी कभी अपने खेत की मिट्टी को उठाकर माथे से लगाता, सम्मान प्रकट करता। हमने देखा कई लोग जब अपने वतन लौटते हैं तो हवाई जहाज से उतरते ही जमीन पर पांव रखते हुए पहले धरती को चूमते हैं। राजेश जी, हमें भी हमारी माँ ने सिखाया था कि जब हम सुबह उठे ना तो चारपाई से जमीन पर पांव रखने से पहले धरती को नमस्कार करें कि पूरा दिन उस पर चलना है, हमने हमारा बोझ उठाती है, हमारे पांव पड़ते हैं उस पर, उससे पहले हम उसे माथा झुकाते हैं। अब उस किसान को मिट्टी माथे से लगाते हुए देख करके उसके बेटे ने आखिर पूछ लिया, पिताजी आप इतनी मेहनत करते हैं, ये मिट्टी की खुदाई करते हैं, बीज बोते हैं, लेकिन ये मिट्टी आखिर आपको देती ही क्या है? इतने पसीना बहाने के बाद उतना फल तो नहीं मिलता। पढ़े लिखे लोग, मॉडर्न लोग मशीनों से, अपने दिमाग से कितना धन कमाते हैं। किसान मुस्कुराया, मिट्टी की कीमत जानना चाहते हो? उस किसान ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अपने बेटे की हथेली पर रख दी। देखो बेटा, यही मिट्टी है जो बीज को पेड़ बना देती है, पेड़ को फल देती है और फल से किसी और का जीवन चलता है, मतलब और बहुत सारे पेड़ बना देती है। मिट्टी खुद कुछ नहीं मांगती, बस देती ही रहती है। बेटे ने पूछा, तो क्या हमें भी मिट्टी जैसा बनना चाहिए? किसान बोला, हाँ, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं कि हमने कितना पाया, बल्कि यह है कि हमारे कारण किसी और की जिंदगी में कितना कुछ खिला, किसी और को कितना मिला। ये मिट्टी का संदेश है। हम मिट्टी से बने हुए हैं, हम मिट्टी को तुच्छ नजरों से ना देखें, मिट्टी बहुत वैल्यूएबल है, हमें एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, मिट्टी से ही आना है, मिट्टी में जाना है।
1: चिंतन, चिंतन।
0: तो बहनों भाइयों, ये माटी ही हमारी कहानी है, हमारी जिंदगानी है।

0: माटी बोलती है, इतिहास के पन्ने खोलती है, उन घटनाओं को तोलती है। भाई ये गीत तो पूरा का पूरा स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित हो गया, और भारत का स्वतंत्रता दिवस आ रहा है 15 अगस्त को। रवि शर्मा फिर आपको याद दिला रहा है कि 22 अगस्त को मनाया जा रहा है नवनाइट सेंटर में, हेज में है ये, प्रिंटिंग हाउस लेन में। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी व्यवस्था, सारे इंतजाम, फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, फ्री फूड, फ्री एंटरटेनमेंट, ऑल फ्री बिकॉज इट इज योर इवेंट। तो पहुंचिएगा उत्साह के साथ, आप आइए, सबको लाइए, ये कहना है इंडियन हाई कमीशन का और इंडियन डायस्पोरा का। कम्युनिटी इवेंट है, सब मिल करके मना रहे हैं 22 अगस्त को नवनेट सेंटर में, जो हेज में है, प्रिंटिंग हाउस लेन में, भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ कहिए या 80वां स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि वर्षगांठ तो एक साल बाद आती है ना। तो भाई 22 अगस्त को मनाएंगे, और आज की इस गीत के लिए और चिंतन के लिए धन्यवाद पहुंचाएंगे राजेश प्रसाद जी को, साउथ हॉल में प्रसाद वाले, और हमारे मित्र विपुल सिडानी जी को, क्वालिटी वाले। और बहनों भाइयों, जो गीत आपने सुना कैसा लगा? बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई है, बहुत अच्छा लगा। नवरंग फिल्म का था, 1959 में आई थी ये फिल्म, और महेंद्र कपूर व साथियों की आवाजें थी। ऐसे ही चिंतन भाई हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद आप सुन पाते हैं। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK, फिर याद दिला रहे हैं आपको, अच्छा रेट चल रहा है। पैसे भारत भिजवाना चाहे तो मौके का फायदा उठाइए। फॉर £1 SBI इज गिविंग 127.85 इंडियन रुपीस। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई।
3: ये है लाइका गोल्ड। This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: Sad

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
1: खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया, डोरी मेरे पास हो तो सैया तो है खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आँखों में बसा के आँखें मीट लूं।

0: दो गीत बैक टू बैक सुनवाए हमने आपको भाई। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड गीतों का खजाना है, गोल्डन गीतों का खजाना। राइट, बैक टू बैक संगीत हर घंटे में दो गीत प्रस्तुत करवाता है भाई, आपके नाम लगाता है। और फिर
1: लिसन व्हेयरएवर यू आर बाय डाउनलोडिंग द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप नाउ।
0: भूलिएगा नहीं, मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भाई लाइका गोल्ड खजाना जो है आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं।
2: ये है Like a Gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: और इस गीत को सुनकर आपको मिसिस देवगन याद आ रही होंगी। जानते हैं ना, भूले तो नहीं आप मिसिस देवगन को। अरे भाई अपनी काजोल, आज काजोल अपना जन्मदिन मना रही है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हर। भाई काजोल से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब काजोल काजोल नहीं लगती थी, एक स्कूल की बच्ची लगती थी वो, और उनकी माता श्री वो भी साथ आई थी, तनुजा जी।
1: मैं एक जवान लड़का, तू एक हसीन लड़की।
0: ये हसीन लड़की भाई उस वक्त सचमुच स्कूल की कोई लड़की लगती थी। मैंने सोचा कि शाहरुख खान के साथ हीरोइन कैसे जमेगी ये। हालांकि भाई वो शिल्पा शेट्टी भी थी, फिल्म थी बाजीगर जिसका प्रीमियर हो रहा था, एक सिनेमा होता था अजमेर में बेलीव्यू, और भाई उसकी स्टेज पर मैंने प्रेजेंट किया था शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी को। संगीतकार अनु मलिक भी आए थे, उन्होंने कुछ गीत गाए थे। भाई वो माहौल और वो जमाना, वो दौर कुछ और था, पर मैं सोचता था कि ये हीरोइन लगेगी कैसे इतनी छोटी बच्ची, और साहब सुपरहिट साबित हुई। और शिल्पा शेट्टी और काजोल के साथ मेरी फोटो भी अखबारों में छपी थी उस समय। फिल्म कौन सी थी याद है ना, बाजीगर, हिट साबित हुई थी फिल्म बाजीगर।

0: बेलव्यू सिनेमा भी भाई अब यादें बनकर रह गया है। अनु मलिक ने गीत गाया था, शाहरुख ने केक काटा था, वो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं जब कभी ऐसा कोई प्रसंग आता है। अजय देवगन से तो कई बार मुलाकात हुई, लेकिन उनकी धर्मपत्नी काजोल तो उसी समय मिली थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। काजोल, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a Gold.
1: Like a Extra podcast update.
0: Like a Extra par bhai hamara naya एपिसोड जो है वो आ चुका है, ऑनर बेस्ड अब्यूज, एक ऐसी बर्निंग भाई कहानी या ज्वलंत टॉपिक है, ये विषय ऐसा है जिसे डिस्कस किया है दीप राजा और खुश ने। और भाई ये दोनों ही इस काम में बड़े माहिर हैं और बड़े अच्छे सवाल उठे हैं, अच्छी डिस्कशंस हुई है। तो ये जो ऑनर बेस्ड अब्यूज़ हमारी कम्युनिटीज़ में कहीं कहीं सुनाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं, उन पर विस्तार से परिचर्चा हुई है, ज़रूर देखिएगा ऑनर बेस्ड अब्यूज़ होस्टेड बाय दीप राजा एंड खुश। ये नया एपिसोड हमारी पॉडकास्ट का नंबर 27 उपलब्ध है। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
1: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: ये है लाइक अ गोल्ड
0: travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
0: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
10: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24। Our line.
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
4: tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
7: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
4: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
13: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par, DAB digital radio par, Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe. It's summer on the Leica Radio Network.
14: બંધ કર રેડિયો.
15: નહીં કરું કીધું ને.
14: અરે કહું છું બંધ કર, મારે ટીવી જોવું છે.
15: તમારે જે જોવું હોય તે જુઓ, સમજા ને. જ્યાં સુધી રવિ શર્મા ને ન સાંભળું ને ત્યાં સુધી રેડિયો બંધ નહીં કરું. નહીં કરું, નહીં કરું.
14: એટલે
15: શું? વાર છોડીશ, ઘર છોડીશ, પણ રવિ શર્મા ને નહીં છોડું. ના, એટલે રેડિયો માં રવિ શર્મા ને સાંભળવાનું નહીં છોડું.

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे। लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
3: Dad, Dad, Dad!
4: What's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
10: बीकानेर वाला परंपरा भी,
11: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
12: अटेंशन, द आईटेक डेसी इंडिपेंडेंस फूड फेस्टिवल एंड ट्रेड वीक इज ऑन फ्रॉम द 3rd टू द 9th ऑफ ऑगस्ट एट आईटेक कैश एंड कैरी साउथहॉल विद अनबीटेबल होलसेल डील्स ऑन rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203-393-5225. iTech Wholesale, open 24/7. Everything your business needs, all under one roof.
13: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
14: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
15: और बहनों भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, गीत सुनवाने से पहले सोचता हूँ ये गीत किसके नाम करें। भाई ये गीत जा सकता है वेंकटेश प्रसाद के नाम। कौन वेंकटेश प्रसाद? पूरा नाम बताएं क्या? अरे भाई, जयंती प्रसाद, जयंती प्रसाद यानी वेंकटेश प्रसाद जो है, जयंती तो उनकी पत्नी का नाम है, पिता का नाम क्या है वो जो उनके नाम के साथ जुड़ता है, वही भाई वेंकटेश प्रसाद जो है वो बॉलर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, पुराने बॉलर और फिर बाद में वो गेंदबाजी के कोच भी रहे हैं। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जावागल श्रीनाथ का तो नाम आपने सुना होगा, उनकी समकक्ष भाई, उनके बराबर ये तेज़ गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। और ख़ास बात ये थी कि दोनों तरफ गेंद को स्विंग कर सकते थे और बेस्ट इनका जो बॉलिंग एनालाइज जो उनका सर्वेक्षण था वो था 33 रन देकर 6 विकेट एक इनिंग में इन्होंने पाकिस्तान की टीम के खिलाफ झटके थे। तो जन्मदिन की बधाई भाई, 57 बरस के हो गए हैं आज वेंकटेश प्रसाद। लेकिन आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो भाई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। रवि शर्मा की ओर से ये तोहफा, ये नजराना रफी साहब की आवाज में ये मीठा सा गाना स्वीकार कीजिए।

आने मिलो सजना फिल्म का गीत रफी साहब की आवाज में। भाई हमें ले आया है खबरों के नजदीक, और खबरों में जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इस मौसम में सूखेपन के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ है, और जिसके कारण कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा खाद्य संकट इस देश के सामने आ रहा है, जिसके बारे में सुन करके आप जरूर चिंतित होंगे। इसके अलावा और क्या क्या है खबरों में, आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। अब से कुछ पल बाद आप समाचार सुनेंगे, पर उससे पहले सुनेंगे वेरी गुड मॉर्निंग।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में भाई ये गीत आप सुन रहे थे। ऐसा लगता है जैसे बंटवारा कर रहे हो, ये तेरा घर ये मेरा घर, तू इधर तू उधर, मैं इधर तू उधर। लेकिन साहब गीत बहुत मिठास लिए हुए जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। इससे पहले जो गीत सुनाया था तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, जबरदस्ती है, बिना भाई वो क्या कहते हैं बिल्डिंग परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, चाहे जगह हो चाहे ना हो, घर तो नहीं बना सकते भाई, पता है ना, यहाँ योगी का बुलडोजर तो नहीं आएगा लेकिन आपको बनाने ही नहीं दिया जाएगा। यहाँ वहाँ दूसरी धमकी दे सकते थे, जैसे मैं एक घर खरीदना चाहता था बहुत सालों पहले की बात है, तो भाई बहुत अच्छा लगा, पसंद आ गया, तो सारी डील होने लगी, तो जो मकान मालिक है वो मुकर गया। अब मेरा एक दोस्त था, उसे मुझसे भी ज़्यादा दुख हुआ, तो पता है उसने क्या कहा, रवि परेशान मत हो, कल मैं इसके घर के सामने ऐसा कुछ करके आऊँगा कि सारे घर वाले बच बच के चलेंगे। क्या करेगा, बस ये नहीं बताऊंगा, लेकिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके कुछ ऐसा करके आऊंगा कि छोड़ो क्या रखा, सच्ची बात है। इस देश में भाई सबसे मुश्किल काम है घर लेना, और गाड़ी तो ले लेते हैं लोग, मेंटेन भी कर लेते हैं, इंश्योरेंस भी भर लेते हैं, घर तक पहुंचते पहुंचते उम्र निकल जाती है, और कई लोग उम्र भर किराया ही भरते रहते हैं भाई। ये रहने की जगह तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, काश ऐसी इजाज़त होती, लेकिन कहाँ है, अब तो हिंदुस्तान में भी योगी का बुलडोजर चल जाता है। प्रोग्राम का तीसरा और अंतिम दौर, स्वागत है आपका। अगर आपने रेडियो अभी सुनना शुरू किया है तो माय नेम इज रवि शर्मा, दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कुछ संदेश आए हैं भाई, इनमें ये क्या है, बेसन साहब ने भेजा है लतीफ़ा, क्या लतीफ़ा है, कह रहा है कि एक महिला ने फ़ोन करके कहा डॉक्टर साहब जल्दी आइए, मेरे बेटे ने ब्रेड खा लिया। अरे डॉक्टर कहता अभी आ रहा हूँ, घबराना नहीं, मैं अभी आता हूँ। दो मिनट बाद फिर उस औरत का फोन आ गया, रहने दीजिए मत आइए, क्यों, तुम्हारे बेटे ने ब्रेड खा लिया था। हाँ कोई बात नहीं, मत आइएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शेव बनाने के लिए दूसरा ब्रेड मिल गया है। कमाल है, पति ने कहा पत्नी से, जानती हो तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
1: है कौन सा फायदा, मुझे बताइए ना।
0: मुझे मेरे सारे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई है, ये फायदा हुआ। और ऐसी बात कह के क्या लगता है आपको कि आपकी सजा खत्म होगी, ये तो एक और सजा शुरू हो गई है आपने जो ये बोला। साहब आज है बुधवार, और शर्मा जी आपको इजाजत है, बोले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा घर पे जाने के बाद।
2: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, अगर आप पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत तो भाई ये मौका है, क्योंकि रेट अच्छा चल रहा है। क्या रेट है आज, वेल फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 127.85 रुपीस मैक्सिमम। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Like a Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: चेशम वाले एजाज भाई, ये गीत आपके नाम कर देते हैं। आप भी रफी साहब के बहुत बड़े फैन हैं हमारी तरह। बैसन साहब, आपने नाम भी कर लीजिए थोड़ा सा गीत आप। प्रकाश नॉर्थ होल्ट में, निर्मला जी विजय मॉरिशस में, जय श्री महेंद्र बजारिया, और ये कौन है, रिक स्टार, रिकिन, थैंक यू आपको।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और वियना में अनिल सोनी जी, अगला गीत भाई दुनिया भर के शरीफ लोगों के नाम। किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की गुर्बत ने मारा, पर शराफत अली को उसकी औरत ने मारा।

0: उनके बड़े अच्छे नंबर आते थे भाई। हाँ मैं पढ़ाई लिखाई में हमेशा 10 नंबर ही। स्वर्गीय मुकेश के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: भाई वो माटी वाला चिंतराज बहुत लोगों को भा गया, सबको पसंद आ गया। इमरान भाई थैंक यू वेरी मच, आपका संदेश मिल गया है। सुनते रहिएगा हरविंदर जी और स्लो में पमी भाई, भरत गंगाराम जी, रंजन, हिना, मीनाक्षी। ये मीनाक्षी कौन सी वाली है, मीनाक्षी पाटिल या मीनाक्षी डागर? भाई जितनी भी मीनाक्षी हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फरीदा गुलाम अली जी थैंक यू। नैना शाह इतने बढ़िया बढ़िया गीत आप सुझाती हैं, लेकिन भाई हमारी ये मशीन और हमारा ये कंप्यूटर जो है ऐसे गीतों को ढूंढ नहीं पाता है, क्या करें। आई विश कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती, मैं जो गीत मांगता लेकर के आप सामने खड़ी होती। तो विमल राय जी थैंक यू वेरी मच, सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ये कौन है, हाँ हमारी नीलम जी, सो नाइस ऑफ यू। मीना शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। राजीव पटेल साहब थैंक यू भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है हमारे पास, क्या है वो आपको बता दूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू टीम अप विद भारतीय विद्या भवन। क्या कर रहे हैं हम उनके साथ मिलकर भाई, द समर शो केस 2026 at Harrow School. They are organizing experience the richness of Indian classical arts and culture in an unforgettable celebration of music, dance and artistic excellence on Saturday the 8th of August from 3 p.m. onwards. Tickets available from ticketsource.com/bhavan or call 07421 497541.
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: तोड़फोड़ की बात नहीं करना आज के प्रोग्राम में। हाँ कोई तकलीफ है तो बताओ।
3: दिल में दर्द रहता है,
0: अच्छा
3: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
0: बहुत गंभीर बीमारी है कन्या। डॉक्टर ने पूछा दर्द कहाँ रहता है बताओ, कहता डॉक्टर साहब पहले फीस बताओ। उसने कहा भाई फीस तो मेरी इतनी लगेगी। देखिए डॉक्टर साहब फीस कुछ कम कीजिए, मैडम कहती है कि फीस तो कम नहीं होगी। कहता फिर नहीं बताऊँगा कहाँ दर्द रहता है, ढूंढते रहो। बिल्कुल नहीं बताऊँगा। या मैडम कहती है
4: नहीं बताऊंगी दर्द कहाँ है, दर्द है अब डॉक्टर तुम हो ढूंढते रहो, या तो फीस कम करो तो बता दूंगी।

पता, मुझे घर वाले डॉक्टर बनाना चाहते थे, डॉक्टरी पढ़वाना चाहते थे, लेकिन भाई ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे सामने मेरे दोस्तों के पास आते थे कि उनको देख करके मैंने डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया। नंबर एक तो ये है कि भाई मैं जो बनना चाहता था वो वाला डॉक्टर मुझे बनाने को तैयार नहीं थे। मेडिकल कॉलेज वाले कहते हैं तुम नहीं बन सकते। मैंने कहा क्यों नहीं? कहते नहीं बन सकते क्योंकि मैं ना लेडी डॉक्टर बनना चाहता था। कहते तुम लेडी डॉक्टर नहीं बन सकते तो जाओ बाहर में, नहीं बने। और फिर पेशेंट कैसे कैसे आते थे। एक पेशेंट बहस कर रहा मेरे दोस्त डॉक्टर के साथ, तो कहता डॉक्टर साहब मुझे ना जैसे सुबह को बुखार चढ़ता है शाम को उतर जाता है, फिर अगले दिन सुबह बुखार नहीं चढ़ता है तो शाम को उतरता भी नहीं है। ये क्या मतलब? अरे जब चढ़ेगा नहीं तो उतरेगा क्यों डॉक्टर साहब, आप समझ जाइए ना। तीसरे दिन फिर सुबह बुखार चढ़ता है शाम को उतर जाता है। डॉक्टर ने कहा भाई इतना लंबा क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे कह दो कि बारी का बुखार है। वो जो बारी का बुखार था ना मलेरिया, उसको बारी का बुखार कहते हैं। बारी का बुखार बारी बारी से चढ़ता है। तो पेशेंट अकड़ गया, वाह डॉक्टर साहब बारी का बुखार कैसे कह दूँ। अरे बारी का बुखार तो तब होगा जब एक दिन मुझे चढ़े, उससे अगले दिन आपको चढ़े, उससे अगले दिन फिर मुझे चढ़े, और उसके बाद अगले दिन आपको चढ़े, तो बनता है बारी का बुखार।

0: Mix are brought to you by Southall Travel.
1: साउथ होल ट्रेवल का पैगाम आपके नाम बता रहे हैं कि अब भाई आप यात्रा कर सकते हैं दुबई की। यस, खोल दिए हैं सारे बंधन, दे दिए हैं छूट। कहते हैं कि FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ होल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पिटेटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Mum, I'm outside.
5: Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store. Mega blockbuster Dhurandhar.
2: Naam kya
3: hai? Hamdani Mazari.
1: Mega blockbuster Dhurandhar, 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
6: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
7: चलती गाड़ी में एक मनचला नौजवान जब डिब्बे में घुसने लगा तो वो डिब्बा था लेडीज कंपार्टमेंट. औरतें चिल्लाई, ए ए कहां घुसे जा रहे हो? घुसे जा रहे हैं, ट्रेन में घुसे जा रहे हैं.
8: ए ये औरतों के लिए है.
7: औरतों के लिए है तो हम किसके लिए हैं? हम भी तो औरतों के लिए हूं.

0: एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए? भाई रेल के जनरल डिब्बे में थोड़ी सी जगह चाहिए, सफर कट जाएगा।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
1: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates they are giving. For £1 in Indian currency, they are giving 128.19 rupees. Pakistani 374.15. Sri Lankan rupee 452.22. Bangladeshi Taka 166.79. And Afghani 88.34.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. The Ravi Sharma Show on LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is sold at the rate of 99.99 pounds per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
0: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
9: सप्टेम्बर महीनामां હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે।
10: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને કુવારા હો છો,
11: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષો નામ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો।
9: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈની જાનમાં। હવે રાઇસલી, પોટર્સવાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં। ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270। નાટકનું નામ યાદ રાખજો।
12: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Bay.
13: Be part of a historic grand opening.
12: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
13: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
12: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
15: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August. At ITEC Cash and Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials, and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX, or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7. Everything your business needs, all under one roof.
16: Up next, Ballybrumbat with Gold Afternoons. On Like a Gold.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
17: वो पूछ रहे हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस कुंवारे क्यों रह जाते हैं, बेचारे समय नहीं निकाल पाते हैं शायद शादी करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो वोट मांगने जाती हैं, फेवर मांगने जाती हैं, तो भाई उनको हर किसी को ना वो आदत पड़ जाती है बहन कहने की, बहन जी वोट मुझे ही देना, बहन जी भाई का ख्याल रखना। मैंने तो एक नेता से पूछ लिया, क्या बात है भाई आपने शादी नहीं की, आप 50 से ऊपर हो गए हैं, क्या रिश्ते नहीं आते क्या? तो कहने लगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, रिश्ते तो बहुत सारी बहनों के आ चुके हैं, लेकिन कोई लड़की पसंद नहीं आती क्योंकि सब में कोई ना कोई कमी नजर आ जाती है। आगरे वाली आग लगाए, झांसी वाली झांसा दे जाए,

कहना मान ले गंगाराम। इससे पहले कि काले बालों में तार चांदी के झिल मिलाने लगे, इससे पहले कि पास की चीजें दूर की चीजें नजर आने लगे, लड़कियों के बजाय जब तुझको बूढ़ियां देख करके मुस्कुराने लगे, बच्चे माशूक की गली के सब तुझे मामा जी कह के बुलाने लगे, बेटा शादी कर ले। अबे शादी कर रहे किससे कर लूं? गंगाराम कुंवारा ही रहेगा, प्यार का मारा ही रहेगा। चलिए साहब, जब तक गंगाराम की सगाई होती है, इजाजत दीजिए, अगली मुलाकात में ढूंढेंगे लड़की इसके लिए। हैव अ सुपर्ब डे, बाय बाय।

गीदड़ जी ने लीडर बनकर झाड़ी एक तकरीर, अखबारों में छप गई तोता मैना की तस्वीर। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अरे फिर वही हुआ जो हम

0: Let's return for the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
1: हम से सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
2: Travel Hub.
1: At all protected.
0: Leica. Cool music for a super hot summertime. On Leica Gold.
3: गुस्सा की माफ समझाना जरूरी है. कल आपने सुना ऑल द सोबर सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार विद 22 म्यूजिक डायरेक्टर्स. आज इनका दूसरा रूप देखते हैं, योडलिंग वाला रूप. सारे गाने इस आवर में उनके योडलिंग वाले गाने और नेक्स्ट आवर में उनके राग आधारित गाने. हाँ, राग आधारित गाने ऑफ किशोर कुमार.

0: I love it. I love it. My brother taught me how to yodel. You know that, my brother Bob. And he's landing into London today from Mumbai. So we're going to do a little jugalbandi. Aamne samne baith ke wo yodeling karega, main bhi yodeling karunga. Yes, hum dono Kishore da ke bade chust fans hai. And I have... उसमें और मेरे में यही फर्क है कि ही डज इट फॉर प्लेजर एंड आई डू इट फॉर मनी. सो आई सिंग फॉर मनी एंड ही सेज आई विल नेवर सिंग फॉर मनी, आई डू इट फॉर प्लेजर. सो ये दोनों भाइयों में एक डिफरेंस है हमारे में, लेकिन ही इज द वन हु टॉट मी, मेरा गुरु, मेरा भाई. सो ही विल बी लैंडिंग टुनाइट एंड आई विल बी हैविंग लॉट ऑफ फन. मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com, ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप. एंड It is in the Laika Radio Midlands. A big, big namaskar to everybody in the Midlands. Hamara station jata hai har kone pe. That's right. Aur mere dost Leicester mein ho ya Birmingham mein ho, they all listen to this show, Gold Afternoons. It is the 392nd day of Laika Radio Midlands, jis pe aayenge Raj Batan from 4 to 7. And on this place here, Laika Gold, we will have Sandy Shah. Yes. So, aage badhte hain. Maine kal sunaye the 3 hours, maine aapko gaane sunaye the Sober Songs of Kishore Da. And by 22 music directors in alphabetical order. Agar kisi ne nahi suna to listen back and you'll enjoy that show like anything. And aaj I'm showing you the versatility of Kishore Da. The versatility matlab the most versatile singer one could ever see. Jaise ke aaj unka yodeling wala roop. Ji haan, the way he yodeled, nobody else in the industry did that. And he cashed in on that one. Kishore Da... एक्चुअली मैं बोलने जा रहा था कि उनके जो योडलिंग वाले गाने हैं वो इस आवर में मैं पेश करूंगा. एंड इन द नेक्स्ट आवर हम पेश करेंगे उनके राग आधारित गाने. जी हाँ, इन्होंने कितने रागों में गाया है मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे कि अपना कौन सा राग है, शिवरंजनी. शिवरंजनी राग में उन्होंने सबसे मशहूर गीत गाया था, मेरे नैना सावन भादों. ऐसे तो इन्होंने मिश्र दरबारी, भैरवी, तोड़ी भैरवी, फिर खमाज राग. मैं आपको सुनाऊंगा खमाज राग में कौन सा गीत उन्होंने गाया था, भैरवी में कौन सा गाया था, मालगुंज, किरवानी, यमन, ये सब रागों में इन्होंने गीत गाए थे. एंड एक्चुअली अ कॉमन परसेप्शन दैट किशोर कुमार वॉज नॉट एडेप्ट इन सिंगिंग राग बेस्ड सॉन्ग्स. You know, he was known to incorporate nuanced classical elements and flair in several melodies, showcasing his range as a singer. Kyunki unko ye prove to nahi karna tha, ek demand thi. जो भी म्यूजिक डायरेक्टर आता था या प्रोड्यूसर डायरेक्टर दे गाने लेकर आते थे, उनको लगता था कि ये मूड का गाना है, ये सीरियस मूड का गाना है, ये सैड मूड का गाना है, ये योडलिंग वाला गाना है, तो वो अपनी योडलिंग करके गाने को हिट कर देते थे. जैसे कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, पूरी अंदाज फिल्म को उन्होंने उठा दिया विद जस्ट अ गेस्ट रोल एंड पूरी फिल्म बिक गई, सारी टेरिटोरीज बिक गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सॉन्ग ऑन द मोटर बाइक विद हिज डिजाइनर ग्लासेस एंड ऑल दैट, यू नो. सो Shades, I would say, rather than glasses. And he showcased, you know, Lata Mangeshkar sang 348 songs with Kishore Kumar, compared with 450 songs with Muhammad Rafi Saab and 161 songs with Mukesh. Lekin those 348 songs with Kishore Kumar were all super duper hits. Par aaj hum concentrate karne wale hain yodeling songs this hour and... Oh yeah, राग आधारित गाने in the next hour. दूसरा और तीसरा रूप किशोर कुमार का, the two extremes. Enjoy yourselves and message me when you listen to all these songs and let me know what you think of them.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.85. 127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
1: Southall Travel, at all protected.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208 922 3344 a 24-hour

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Feel good classics all day. This is Like a Gold.
2: वो गाना था फिल्म मेरे जीवन साथी का 1972. 1969 में एक फिल्म थी प्यार का मौसम. उसमें दो वर्जन्स थे, किशोर दा का और रफ़ी साहब का. दोनों वर्जन्स हिट थे, लेकिन ये वर्जन जो था वो सुपर डुपर हिट हो गया बिकॉज ऑफ द योडलिंग ऑफ किशोर कुमार. सुनिएगा.

0: जिंदगी वहाँ सेट हो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
3: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
4: सोना ट्यूर्स .co.uk स्पेशल ऑफर जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट अप टू 400 ऑफ। कॉल सोना ट्यूर्स नाउ ऑन 02089510111।
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: Look, there's a snail! And its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
7: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal, too. So book them an appointment at Specsavers today, for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
6: Conditions apply. See online for details.
5: Feel good hits. In the sun. With Leica Gold.

दुश्मन जिसे सताए इसको लगा के जाए, जाके नजर मिलाए धोखा कभी न खाए। बूढ़ा हो या हो बच्चा तुम हो नजर

0: to book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: यू नो हाउ यूके वेदर कैन डू full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
3: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
6: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
5: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
7: अक्रॉस लंदन, दिस इज बाली ब्रांबाट ऑन लाइक ए गोल्ड।

0: किशोर दा ने यूडलिंग कैसे सीखा? ही यूज्ड टू बी अ ग्रेट फैन ऑफ सर्टन वेस्टर्न यूडलर्स आई वुड से, एंड दे वर लाइक फ्रैंक आई फील्ड जो थे, जिसको मैं भी सुनता था, एंड आई यूज्ड टू रिमेम्बर द टाइप ऑफ स्विस टाइप ऑफ यूडलिंग दे यूज्ड टू डू. जिमी रॉजर्स, टेक्स मॉर्टन, ये सब थे. एंड कुछ रिकॉर्ड्स अनूप कुमार उनके भाई के पास थी, वो सुन सुन के, एंड देन ही स्टार्टेड लर्निंग यूडलिंग आउट ऑफ दोज. किशोर दा.
1: Reminisce those classics on Like a Gold.

0: just an example, which was played yesterday anyway, by Sandy Shah. Just the yodeling bit. But then उसके बाद दूसरा गाना सुनाता हूँ.
1: मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुम रूप पकड़ घूम बाजू बाबू.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: For £1 in British sterling, you can fetch up to 127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
1: अभी आपने जो दो गीत सुने, दो अलग अलग रूप किशोरदा के. पहला रूप था युडलिंग का और इस आवर में इट्स गोना बी राग आधारित गाने किशोरदा के. कोई बिलीव नहीं कर सकता कि ये वही सिंगर है जिसने युडलिंग किया. मेरे नाना सावन भादो जो रफ़ी साहब गाने वाले थे और फिर राजेश खन्ना जी ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ किशोरदा को कहिएगा वो गाए, तो आर डी बर्मन जी ने उनको गाना रिकॉर्ड करके थोड़ा सा भेज दिया और वो सीख कर आए और उन्होंने गा लिया. आज तक सुपर डुपर हिट है महबूबा की फिल्म का 1976 का. एंड देन मंजिल फिल्म का उन्होंने जो गीत गाया रिमझिम गिरे सावन, दैट इज राग किरवानी. हम गाने तो सुनते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता. ऑफ कोर्स आई वुडंट एक्सपेक्ट यू, बट इट्स गुड टू नो दैट अ सिंगर हु वाज नॉन ट्रेन्ड, ए टोटली अनट्रेन्ड सिंगर हु कुड सिंग सो परफेक्टली इन दीज राग आधारित सॉन्ग्स. नेक्स्ट गाना जो होगा वो राग यमन पे, फिल्म है अनुरोध, राग यमन. उसके बाद अमर प्रेम में उन्होंने एक गीत जो गाया था कुछ तो लोग कहेंगे, दैट इज राग खमाज, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा आज. फिल्म शर्मीली में आपने गीत सुना है खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखर जाने को, दैट इज राग भीम पलासी. जी हाँ, और दूसरा एक किरवानी का है बेकरार दिल तू गाए जा, दूर काराही जो फिल्म थी उसमें. सुनते जाइएगा किशोर कुमार विद द टू एक्सट्रीम्स, द सेकेंड एक्सट्रीम राग आधारित गाने.
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय धुरंधर.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.
3: मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर ऑन उत्सव गोल्ड 15th एंड 16th ऑफ अगस्त एट 9 PM.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
6: साफो ट्रेवल. At all protected.
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
7: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
10: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
10: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: Packed for the trip? Gifts? Passport?
14: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
13: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
14: Simzy?
13: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
15: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
16: T's and C's apply.
17: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।

0: से निराला।
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
4: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Co food containers are recyclable, reusable, and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
5: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
6: बीकानेर वाला परंपरा भी,
7: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फर्ड, IG26HA, कॉल 07555-506015।
8: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर, पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना, मंत्रा हॉलीडेज, कॉल करो 02030-773-6333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
9: बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
10: पवन जी, मैंने सुना है जी? आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
11: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
12: भाई, निकाल माइक।
13: भाई भाई के पिया कितना सुंदर।
14: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
15: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash and Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX, or call 02030-393-5225. ITEC Wholesale, open 24/7. Everything your business needs, all under one roof.
16: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
17: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

सो आपने सुने किशोरदा के राग आधारित गीत एंड देयर वर टू एक्सट्रीम्स. फर्स्ट आवर में ही सैंग ऑल योडलिंग सॉन्ग्स एंड देन इस आवर में राग आधारित गाने. सो

0: आंख बंद करके सोचो कि किस एक्ट्रेस पे ये पिक्चराइज हुआ होगा, तो यू कैन जस्ट इमेजिन नन अदर देन काजोल, काजोल विशाल देवगन, या तो काजोल मुखर्जी या सिर्फ काजोल। यस, आज मैं कुछ छोटी सी एक कनेक्शन आपको बताता हूँ। एक बहुत ही उम्दा हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उम्दा एक प्रोड्यूसर कहो, दैट वाज सशाधर मुखर्जी। सशाधर मुखर्जी, ही वाज अ फिल्म मेकर एंड ही स्टार्टेड हिज करियर विद बॉम्बे टॉकीज। 1930s में बॉम्बे टॉकीज से उन्होंने अपनी करियर शुरू की थी और फिर बाद में जुदा होकर उन्होंने फिल्मिस्तान स्टूडियो शुरू की विद द पार्टनरशिप ऑफ अशोक कुमार, ज्ञान मुखर्जी, राय बहादुर चुनीलाल। राय बहादुर चुनीलाल याद है? ही इज़ द फादर ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन। मदन मोहन जी के पिताजी के साथ सशाधर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान स्टूडियो विद अशोक कुमार, ज्ञान मुखर्जी एंड मदन मोहन जी के पिताजी के साथ सशाधर ने शुरू किया। एंड देन 1950s में ही स्टार्टेड हिज इंडिपेंडेंट स्टूडियो कॉल्ड फिल्मालया। जैसे कि ये फिल्में आपने देखी, दिल देके देखो, लव इन शिमला, एक मुसाफिर एक हसीना, लीडर, ये सब फिल्में इन्होंने बनाई थी। तो इन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था। बेटा कौन? जॉय मुखर्जी ऑफ कोर्स। एंड छह बच्चे थे, उसमें से तीन बेटे जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी एंड शोमू मुखर्जी। शोमू मुखर्जी आल्सो प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड फिल्म्स। अभी शोमू मुखर्जी पे आ गए। शोमू मुखर्जी ने शादी की थी तनुजा से, और शोमू मुखर्जी और तनुजा की बेटी ऑफ कोर्स काजोल। एंड काजोल इज 52 इयर्स यंग टुडे। 5th of August 1974 में जन्मी हुई। 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, जी हाँ, इन्होंने मैच किया ऑफ कोर्स नूतन जी के साथ, क्योंकि तनुजा सिस्टर ऑफ नूतन, सो समर्थ फैमिली और मुखर्जी फैमिली का मिलाप था वो। एंड समर्थ फैमिली में हाईएस्ट अवार्ड्स थे नूतन जी के, और उसको मैच कर दिया काजोल ने। 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2011 में पद्मश्री अवार्ड मिला इनको। शी डिड अ डेब्यू इन 1992। I wish I could have played all her songs this hour, but then we are only allowed one song of 1990s, जो मैंने आवारा भवरे आपको सुनाया। बेखुदी फिल्म थी 1992 की। उम्र थी 18 साल की जब वो अभी भी स्कूल में थी। इन्होंने शादी कर ली अजय देवगन के साथ 1999 में, and they've got two wonderful children. अब देखा जाए तो बाजीगर फिल्म ये दिल लगी, फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ 1995 की फिल्म, कुछ कुछ होता है 98 में, शी एक्टेड द रोल ऑफ अ किलर, यस अ साइकोपैथ किलर इन द फिल्म गुप्त 1997 में, एंड एवेंजर इन दुश्मन फिल्म 1998 की, फिर कभी खुशी कभी गम K3G, दैट इज 2001 की फिल्म, फिर मेरी फेवरेट फना, दैट वाज 2006 की फिल्म, दिलवाले विद शाहरुख खान 2015 की, अनदर ब्यूटीफुल म्यूजिकल फिल्म। उसके बाद तो 2024 तक काफ़ी फिल्में वगैरह। एंड शी इज़ वेरी कंप्यूटर सेवी, एंड शी प्रिपेयर्ड द वेबसाइट ऑफ अजय देवगन फिल्म्स। जब 1999 में एक प्रोडक्शन हाउस खोला अजय देवगन ने, तब इन्होंने पूरी वेबसाइट तैयार की। नाउ इट्स बीन रीनेम्ड एज देवगन एंटरटेनमेंट एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। सो वी आर विशिंग नन अदर देन काजोल, यस काजोल, हैप्पी 52nd बर्थडे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get 127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Do it for your wife, who told you to pick up bread, but instead you picked up Fred, your grandson, again. And now your daughter is calling because he missed football. That's the fourth time this month. You can wave his future career goodbye. If you don't do it for you, do it for your wife and little Freddy.
3: Book a free test today at bootshearingcare.com and take advantage of our interest-free payment plans. Boots, with you for life. T's and C's apply.
4: Like our gold.
5: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
6: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
7: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
6: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: Europe or UK के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
10: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
11: Two businesses,
12: same town,
11: same service.
12: One appears on page one of Google,
11: the other doesn't.
12: Guess which one gets the customer?
11: The truth is brutal.
12: The first page of Google gets the business.
11: Everyone else gets what's left.
12: So here's the real question:
11: when your customers search for what you sell, do they find you?
12: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
11: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: Dreaming of paradise?
14: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
13: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
14: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
13: At all protected.
15: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
16: बीकानेर वाला परंपरा भी.
17: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW3 1QT. कॉल करें 07487-687-885.
18: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
19: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
18: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
19: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
18: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
19: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
20: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
21: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
22: Four beers, please, garçon!
21: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Like a goal. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
1: Artist of the week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Now visit starters.co.uk or call
1: 208-900-2323-073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: अटेंशन, द आईटेक डेसी इंडिपेंडेंस फूड फेस्टिवल एंड ट्रेड वीक इज ऑन फ्रॉम द 3rd to the 9th of August at ITEC Cash and Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX, or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7. Everything your business needs, all under one roof.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

अभी नेक्स्ट गाना जो है दैट इज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ किशोर कुमार जिसमें उन्होंने योडलिंग किया था 1950, दैट इज द फिल्म मुकद्दर. सुनिएगा.

जाए दुनिया बड़ी बेकदर सह न सके मगर नजरों से मिले नजर दिल से मिले दिल दिल से मिले दिल हे आती।

दुनिया बड़ी बेकदर, सह न सकी ये मगर, नजरों से मिले नजर, दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल, हे आंटी हे।

0: मंजिल किधर घूम रहा मेरा सर, अच्छा होकर जाऊं मर।
1: पलट तेरा ध्यान किधर, आया तेरा लकी नंबर।
0: दुनिया ने की अब कदर, दौलत जो है मेरे दर, मिलके बसाएंगे घर, मिल गई मंजिल।
2: And now it's Sandy Shah next on Drive Time. Yeah, hello, do some Dandiya Ras while I go home. And on Laika Radio Midlands, it's gonna be Raj Patan. And Saath Nibhaiyega Aap Sandy Shah Ka.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
3: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 0779518100।
4: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
5: This is Sandy Shah on Gold Drive. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: सप्टेम्बर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
3: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
4: ए तमे स्त्रीओ अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगोवानो बंद करो।
2: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 0793153420। नाटक नु नाम याद राखजो।
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
6: Anu Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
7: Sham chalne lage.
6: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
8: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
9: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
8: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
9: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट। कॉल 0192322774। बुक योर टेबल टुडे।
2: इलफर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
10: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
11: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इलफर्ड, IG26HA। कॉल 0755-506015।
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
14: बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
15: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
16: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
17: भाई, निकाल माइक।
18: भाई भाई के पिया कितना सुंदर।
19: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. It's summer on the Leica Radio Network.

0: Gold Drive with Sandy Shah. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: We are very pleased to announce that the SCDO has lifted its advice against all but essential travel to the Bay. It's a long drive, mate. Call Southall Travel for the most competitive the Bay deals on 0208 574 8410. Don't forget, they are at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Like a Gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com. Start.

0: सुन रहे हैं गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह।
1: Like a gold, traffic and travel.
2: This is Martin with your travel. That's the M4 all cleared up now onto the elevated section eastbound. You head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. Still slowing on the A312 the partway southbound before the M4 Junction 3. A4020 Uxbridge Road has eased between the Parkway and Southall Park. Still slowing on the A312 Church Road and Mandeville Road as you head from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to North Holt Station. A40 Weston Avenue, heavy westbound before Gypsy Corner, queuing on the A406 North Circular Road in both directions at the Hanger Lane Gyratory. Finally to the Tube, and severe delays on the Central Line due to an earlier signalling problem at Marble Arch. That's the latest traffic and travel.
3: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colours TV.
5: I hope me janena hum log waqt par pahunche.
4: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
4: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
4: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
4: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
8: 0208574 8410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
10: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271993। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
11: एक ऐतिहासिक दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना। मंत्रा हॉलीडेज, कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्र।

0: ਬੇ ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
4: सैंडी शाह कंटिन्यूज विद लंदन्स बिगेस्ट बॉलीवुड क्लासिक्स
5: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर
6: सुनिए ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: मोस्टली सनी इंटरवल्स। मैनचेस्टर में आज रात हल्की फुल्की बारिश, हल्की फुल्की हवा, 12 डिग्री टेम्परेचर। कल मैक्सिमम 19, मिनिमम 10 और लाइट रेन शॉवर्स होंगे।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Ashwini.
0: ढलती शाम ले चली है हमें म्यूजिकल सफर की ओर। द इवनिंग शो विद अश्विनी में तैयार हो जाइए फॉर फैंटास्टिक मेलोडियस ट्रैक्स, यादों की बारात पहले, उसके बाद में इमोशन ऑफ द डे एंड गजल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली। लेकिन उसके पहले हो जाए दो बैक टू बैक गीत, वॉल्यूम अप रखिए।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. The sun is out. And so are the summer hits on Leica Gold.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मिड वीक फील गुड वेंसडे तक पहुंच गए आप और हम। पूछिए आप सबसे, कैसे हैं आप सब? हैप्पी हैप्पी लाइक मी बिकॉज इट्स वेंसडे। सो दो दिन इधर एंड दो दिन उधर वाला शो आज हम करेंगे साथ में, शाम 7 से मिलके 10 बजे तक। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, सारे के सारे प्यारे प्यारे धुरंधर्स आ रहे हैं, अपनी अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। शो का आगाज हमने किया आईना फिल्म से गोरिया रे गोरिया, जॉली मुखर्जी एंड लता मंगेशकर की आवाज़ से। 90s के बच्चे खुश हो गए, फिर 80s के बच्चे खुश हो गए क्योंकि राम बलराम फिल्म से मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ में, लड़की पसंद की। आज क्या सवाल पूछने वाली अश्विनी? ऐसा थोड़ी होगा कि असाइनमेंट नहीं देने वाली, आ गई टीचर। लाइफ थ्योरी, जी हाँ, छोटी सी और प्यारी सी लाइफ थ्योरी, बहुत सारी गपशप इंटरैक्शन बस यही पे आपके अपने इस म्यूजिकल फैमिली शो में आप सबका स्वागत है। आज का सवाल क्या है? पैसों से रिलेटेड बात होने वाली है आज। मनी मनी, पैसा पैसा, रोकड़ा, कैश, वट एवर वी सेड। सो मनी इट्स स्कैरी फॉर सम पीपल, इट्स कम्फर्ट फॉर सम पीपल। ठीक है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि पैसे के बारे में, ठीक है, तो आप किस वे को ज़्यादा प्रेफर करेंगे वाइल डूइंग पेमेंट? कैश देना पसंद करते हैं आप या कार्ड के साथ में पेमेंट करना पसंद करते हैं? ना ना ना ना, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू योर कार्ड डिटेल्स एंड ऑल दोस अदर थिंग्स। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि आप कार्ड से पेमेंट करना पसंद करते हैं जब भी आप कोई शॉपिंग करते हैं, या आपको कैश देना यू आर कम्फर्टेबल भी? नहीं नहीं नहीं, बस कैश लो, ये कार्ड वार्ड हमारे लिए झंझट है। ओके, आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है ज़रूर हमें बताइए। नेक्स्ट ट्रैक के लिए थोड़ा वॉल्यूम अप रखना है आपको, क्योंकि आशा भोसले एंड किशोर कुमार ये कॉम्बिनेशन है, तो देखो मतलब आपकी इच्छा हो तो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपए एंड 85 पैसे, दैट इज 85 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: This is Ash Winnie on Leica Gold. This part of the show is brought to you by Durandar.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
0: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192322727274. बुक योर टेबल टुडे.
4: सप्टेम्बर महीना मा हसनो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे.
5: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने लग्ने कुवारा हो छो.
6: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगवानू बंद करो.
4: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जानमा. हवे राइसली, पॉटर्समार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटनमा. टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आजे ज कॉल करो मंजूने ऑन 0793153427. नाटक नु नाम याद राखजो.
0: Kajal's Couture's biggest end of season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear, and jewelry from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall, and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
10: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
11: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
12: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 0779518100.
0: Leica Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले Leica Gold और ऑनलाइन सुनो LeicaGold.com पे. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai
3: Laika Gold.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 29 मिनट्स पास्ट 7, 7:29। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो आप सभी का फेवरेट सेगमेंट, लाइफ थियरी सेगमेंट, आज बात करने वाले हैं द मनी थियरी सेगमेंट। और मनी में क्या आ रहा है? द कॉइन। सो लेट्स कॉल दिस द कॉइन थियरी। आपने किसी कॉइन को देखा है कभी हाथ में लेके? आई नो आपने कहा होगा कि कॉइन की एक साइड है, कॉइन की दूसरी साइड है। कॉइन तो हम लोग कितनी बार डिसीजंस लेने के लिए कॉइन को उछालते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कॉइन कितनी जर्नी करके आता है? कभी किसी बच्चे ने उससे आइसक्रीम ली होगी, कभी किसी ने उससे टिकट खरीदा होगा, कभी किसी चैरिटी बॉक्स में रहा होगा, कभी किसी के पर्स में सालों तक पड़ा होगा, और ना जाने जब उसे यूज़ किया गया तब वो पहुँचते पहुँचते आप तक आ गया। उस कॉइन ने अपनी जर्नी डिसाइड नहीं की थी, जैसे जैसे चीज़ें आती गई वैसे वैसे वो कॉइन आगे बढ़ता गया। अब इस कॉइन का हमारी ज़िंदगी से क्या लेने देना, हम भी उस कॉइन की तरह हैं। हाँ, हम अपनी ज़िंदगी में टारगेट्स ज़रूर सेट करते हैं, लेकिन हम कहाँ कहाँ कब कैसे पहुँच रहे हैं, किन अनुभवों से पहुँच रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता है ना। जैसे कि आज सुबह आप घर से निकले होंगे या घर में भी होंगे, जो भी आज आपका पूरा दिन रहा, सुबह से लेके अब तक की जितनी भी आपकी जर्नी रही है, अनुभवों की जर्नी, बाहर की जर्नी, कुछ तो आप अभी अलग ज़रूर हैं। लेकिन जो आपने डिसाइड किया था, क्या सारी चीज़ें आपके मन के मुताबिक हुई? नहीं ना। यही तो ज़िंदगी है कि कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं रहती। तो ये कॉइन हमें यही सिखाता है कि भाई फ्लो के साथ में चलो, अड़ियल ना बने कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, ये मैं नहीं करूँगा, मैंने ये सब चीज़ें नहीं करनी है। जस्ट गो विद द फ्लो एट टाइम्स, और जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे रिलेशनशिप हमारे आसपास के लोगों के साथ और फैमिली के साथ में हमें तो लगता है कि हम लोग अनवांटेड है। ठीक है, मे बी अभी आप अनवांटेड लग रहे हैं, पर ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव पे आप उनके लिए बहुत ज़रूरी थे, है और रहोगे। जैसे कि पैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और आज मैंने क्वेश्चन भी आप सबसे पैसे से रिलेटेड ही पूछा था, तो कॉइन हमें यही सिखाता है, जस्ट गो विद द फ्लो। डेस्टिनेशन आप नहीं डिसाइड कर सकते, वो तो ऊपर वाले ने जो डिसाइड करके रखा है वहाँ पे पहुँच जाओगे। आई नो बहुत छोटी सी थियोरी थी ना आज की, पर इसका तात्पर्य यही है समझने के लिए कि हम जिद पे नहीं आ सकते कि जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगी। हाँ, आप जिंदगी के हिसाब से चलेंगे। कैसी लगी आज की लाइफ थियरी? क्या आप जिंदगी के हिसाब से चलते हैं या जिंदगी आपके हिसाब से चलती है? हाँ, मुझे मत बताइए, क्योंकि जिंदगी है आपकी, डिसीजंस जिंदगी के। कैसी लगी थियरी जरूर बताइएगा। एंड अब चलते हैं यादों की बारात की तरफ, गीता दत्त की आवाज में। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, जरूर बढ़ा लीजिए।
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM.

0: updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie on Like a Gold.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Two businesses.
4: Same town.
3: Same service.
4: One appears on page one of Google.
3: The other doesn't.
4: Guess which one gets the customer?
3: The truth is brutal.
4: The first page of Google gets the business.
3: Everyone else gets what's left.
4: So here's the real question.
3: When your customers search for what you sell, do they find you?
4: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस
6: अच्छा तो हम चलते हैं
5: व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस Excellent. Food amazing. और experience ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी recommend करेंगे. Vivek House, Watford. Book on WhatsApp 07300998823.
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic sims, no kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.

0: Like our gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.05 इंडियन रुपी, 373.79 पाकिस्तानी रुपी, 451.7 श्रीलंकन रुपी, 166.62 बांग्लादेशी टाका, 88.54 अफगान अफगानी, 174.23 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर, 63.25 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £101.79 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets. One of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिलाने की घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 48 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. इस आवर का आखिरी गीत लता मंगेशकर एंड मनमोहन सिंह की आवाज़ में वारिस फिल्म से सुना रही हूँ, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम. मैंने आप सबसे सवाल पूछा था कि कैश में पेमेंट करना आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, बराबर लगता है या कार्ड से. तो इक्वली सभी ने आंसर्स दिए. कुछ लोगों ने कहा कि भाई कैश के साथ में हम कंफर्टेबल हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग कार्ड के साथ में पेमेंट करने के लिए कंफर्टेबल हैं. देखिए अपनी अपनी चॉइसेस, अपनी अपनी कन्वीनियंस बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए. लेकिन वैसे भी अभी वक्त बदलते जा रहा है, कॉन्टैक्टलेस कार्ड ज़्यादा आते जा रहे हैं. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कब कहाँ कैसे पेमेंट कर रहे हैं और उसके साथ में थोड़ा केयरफुल ज़रूर रहिए. छोटी छोटी यहाँ पे आपको हम टिप्स भी देते हैं, कुछ चीज़ें याद भी दिला देते हैं, बिकॉज वी ऑल आर अ म्यूजिकल फैमिली. दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से लेके फ्राइडे तक आप सुनते हैं मेरी आवाज़ शाम 7 से 10 बजे तक. आज मना रहे हैं मिड वीक, फील गुड वेंसडे सेकेंड आवर में. तो आह उफ वाले गाने हैं.
0: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 50th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colors TV.
3: I hope Major Naina, we'll be

0: Now visit starters.co.uk or call 0208 900 2323.
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me.
3: Southall Travel, auto protected.
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
8: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208767-7627।
9: द इवनिंग शो विद अश्विनी,
10: लाइक अ रेडियो 90s, लाइक अ रेडियो पंजाबी, लाइक अ गोल्ड 2, नाउ अवेलेबल ऑन द लाइक अ रेडियो मोबाइल ऐप एंड अलेक्सा। मेरे प्यार

0: ओहो जी क्या बात, सेकेंड आवर और आप और हम इस म्यूजिकल जर्नी में चल पड़े हैं आगे। इमोशन ऑफ द डे यानी फील गुड वेंसडे में कौन सा गीत लेके आई हूँ, पक्का वाला प्रॉमिस, वो गीत तो सुन के आप कहोगे मजा आ गया यार। पहले हो जाए तो बैक टू बैक गीत।
1: Like a gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Like a.
4: The Evening Show with Ashwini.

0: आइए जी आइए, वेलकम। दिस इज द सेकंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। इस आवर का आगाज हमने किया था लता मंगेशकर एंड उदित नारायण की आवाज में, आवाज दो हमको। व्हाट अ ब्यूटीफुल मेलोडियस ट्रैक दिस वन इज। एंड उसके बाद में कुर्बानी फिल्म से हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे अनदर मेलोडियस ट्रैक। तो इस आवर में मैं क्या सुनाने वाली हूँ आप सबको, इमोशन ऑफ द डे है। सो फील गुड वेंसडे में बहुत ही बेहतरीन गीत, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो आप सुनेंगे ही उसके बारे में। एंड आप लोगों के फीडबैक्स आते रहते हैं, आप लोग भी बताते हैं कि यार जब ओपनिंग होती है शो की और जो गाने हम आपके लिए प्रेजेंट करते हैं उन्हें आप कितना पसंद करते हैं। आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों का साथ और कुछ बड़ी ही दिल के करीब बातें होने वाली हैं इस आवर में, तो सुनते रहिए। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station.
2: With Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपियन 85 पैसे। Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's.

0: What a fantastic track, Prem Pujari, which was released in 1970. उस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सुनाया आप लोगों को रंगीला रे। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, चाहिए तो एक पेन और डायरी लेके बैठ जाइए और बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपको आपकी इनकम बढ़ानी है तो ये मतलब अश्विनी कुछ नई चीज़ बता रही है। हाँ हाँ, जो अश्विनी ने पढ़ा है ना वही बता रही है आपको। तो मरियम ये 67 ईयर ओल्ड महिला हैं जो रहती हैं कोलंबिया में, एंड वहाँ पे कोलंबिया में रहते रहते ना इन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया अपनी इनकम के लिए। तो ये क्या करती हैं मोहतरमा कि ये अपने घर के बाहर जो हैं कुर्सी लगाकर बैठ जाती हैं और उसके बाद में रास्ते से आने जाने वाले लोग उनको ऑब्जर्व करते रहती हैं और उनको देख देख के उस गॉसिप बुक में सारी चीज़ें लिखती हैं। आस पड़ोस के लोगों के घर में से जो फैमिली ड्रामा की आवाज़ आती है वो लिखती हैं, कौन सीक्रेटली किसको कैसे देख रहा है, कहाँ मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन मोहतरमा के पास होती हैं। एंड सरप्राइजिंगली एंड बड़ी ही उत्सुकता के साथ लोग इनके पास जाते हैं पूछने के लिए कि दीदी क्या खबर है। दीदी कहती है इतने में इतना ही मिलेगा, ऐसे शी सेज एंड शी इज चार्जिंग मनी फॉर ऑल द गॉसिप विच शी हैज इन हर नोटबुक। कैन यू इमेजिन, अब इन्होंने जो ये नया बिजनेस स्टार्ट किया है कि अपनी गॉसिप नोटबुक में सारी गॉसिप्स लिखती हैं, उनकी गली में कौन आया कौन गया किसके यहाँ पे कितने बजे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें उनके यहाँ पे हैं। तो आस पड़ोस के लोग जो हैं वो बड़े उत्सुक हैं कहना कि हमें तो गॉसिप सुननी और हम पे करेंगे। तो अलग अलग गॉसिप के लिए अलग अलग इनके पास में रेट कार्ड है और ये रेट कार्ड दिखाती हैं और चार्ज करती हैं। अच्छा, इन्होंने एक अच्छी इनकम का जरिया तो ये बना लिया है, इन्होंने अपना एक घर भी इस पैसे से खरीदा है। अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की ओर अब मैडम बढ़ चुकी हैं, वो भी उन्होंने ले ली। अब लोग इस चीज़ को लेके हंस भी रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मानना पड़ेगा कि इन्होंने जो दिमाग लगाया है अर्न करने के लिए कि और कुछ नहीं बस कुर्सी घर के बाहर लगा के बैठ जाओ और सारी की सारी गॉसिप लिख लो। मुझे अब ये लग रहा है कि जो लोग इनसे गॉसिप सुनने आते हैं उसके लिए वो पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। नाउ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ रील विच आई सॉ डे बिफोर यस्टरडे एंड मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया, जिसमें एक मोहतरमा कहती कि मुझे ना चुगली करनी है एंड माय मम्मी किसी रिलेटिव के यहाँ पे गई है तो वो है नहीं, मैं चुगली किससे करूँ। तो वो एक जगह फ़ोन लगाती है एंड देन दे से कि या दिस इज चुगली सेंटर और हम किसी को आपके यहाँ पे भेज रहे हैं। सीरियसली वी डू हैव गॉसिपर्स इन आवर लाइफ एंड दे एक्चुअली सबकी खबर रखते हैं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Del, Del's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan? Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
3: Like a Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
6: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल।
3: auto protected.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Dad, dad, dad.
11: What's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
11: I will run down to the money exchange now.
10: No, dad. You can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
11: Oi, bale, bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
12: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
13: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.
1: Emotion of the day.

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे,
0: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: क्या बात है, लता मंगेशकर एंड आशा भोसले बहनों की जोड़ी ने जिस तरीके से ये गीत गाया है, उफ, मतलब उफ इज द वर्ड। और जैसे ही गीत शुरू हुआ, इमोशन ऑफ द डे, फील गुड वेंसडे है, तो बनता है कि आपके लिए कुछ फील गुड सॉन्ग ज़रूर लेके आए। आप सभी ने इस गीत को बहुत बहुत पसंद किया, शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। 8:34, इट्स 8:34, आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। हमारे साइलेंट लिसनर्स, जी हाँ, जब आप लोग मैसेज करते हैं मेरे चेहरे पे इतनी प्यारी सी स्माइल आती है, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट कि यू फील लाइक ब्लेसिंग द शो। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार जो हमें मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो रेगुलर लिसनर्स हैं, मतलब वो तो पता नहीं क्या ही डिसाइड करके बैठ जाते हैं, वो जो उनके खाने की प्लेट होती है उसकी सजी धजी प्लेट, बिफोर दे स्टार्ट ईटिंग द फूड, मुझे इतनी सुंदर सजी धजी प्लेट की वो फोटो भेजते हैं ना, आई एम लाइक क्यों करते हो ऐसा, क्यों चाहते हो कि मेरे सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाए। आप लोगों का प्यार दुलार ऐसे ही देते रहिए। व्हेन इट कम्स टू प्यार दुलार, एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी एंड आई थॉट कि आप लोगों से वो आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों से डिस्कस क्या करना, ये बताने वाली चीज़ है क्योंकि बहुत सुंदर चीज़ है। तो क्या आप जानते हैं कि डिज्नीलैंड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी को ये बताया गया है कि जब बच्चे आए और उन्हें प्यार भरी जप्पी, प्यार भरी और जादू भरी झप्पी दे, तो उन बच्चों को वो खुद से ना छोड़े, जब तक बच्चे उनको झप्पी देते रहें वो वहीं रुके। एंड आई डू गेट इमोशनल वाइल सेइंग दिस, बिकॉज दिस सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि हम सभी को ना एक झप्पी की ज़रूरत होती है। कितने बार ऐसा महसूस होता है कि बाकी कुछ ना हो लेकिन कोई आए और हमें झप्पी दे दे। एंड मैंने वो क्लिप देखी थी एंड आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई टीयर्स एक्चुअली। इनफैक्ट एक डॉग भी एक डिज्नी कैरेक्टर के पास गया एंड द डॉग जस्ट वेंट नियर देम एंड उन्होंने उस डॉग को भी झप्पी दे दी, तो डॉग भी खुश हो गया। इंसान तो खुश होते ही होते हैं, तो है ना, जब भी आपके पास कोई झप्पी देने आए ना, तो अनटिल एंड अनलेस दैट पर्सन लीव्स यू, आप रहिए उनके पास में। कभी कभी ना शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी ना सिर्फ वो जो झप्पी होती ना वो अपना काम कर जाती है। चले अगले गीत की तरफ।
0: This is like a gold. Cool music for a super hot summertime. On the Leica Radio Network.
4: ये है
5: Leica Gold.
6: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: Extra podcast update.
1: एपिसोड नंबर 27 आ चुका है. ऑनर बेस्ड अब्यूज दीप राजा एंड खुश ने इसे होस्ट किया है. व्हेन लोग क्या सोचेंगे बिकम्स लाउडर देन सेफ्टी एंड इट्स नॉट जस्ट वुमेन, दिस आल्सो अफेक्ट्स द मेन हु सफर इन साइलेंस एंड आर ऑफन ओवरलुक्ड इन दीज कॉन्वर्सेशंस. लाइक आवर एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइक आवर एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com. Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
0: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद ले. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027 1934.
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स. क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स.
4: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. On this week's Leica Extra podcast, Kush and Deep Raja discuss honor-based abuse.
6: When people are going to get help, those additional perpetrators aren't necessarily being recognised. The primary perpetrator, the husband, was captured, but, you know, the rest of the key players behind the scenes weren't recognised. And we need to kind of be talking about this more so the professionals can catch, you know, all of the perpetrators of this abuse that carry it out.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Aika Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.04 इंडियन रुपी, 374.05 पाकिस्तानी रुपी, 451.59 श्रीलंकन रुपी, 166.59 बांग्लादेशी टाका, 88.46 अफगान अफगानी, 174.22 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर्स, 63.24 मॉरिशियन रुपी.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £101.61 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़िया, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 8:50, इट्स 8:50. 5th of August, वेंसडे का दिन, जिसे हम कहते हैं फील गुड वेंसडे. दो दिन इधर दो दिन उधर वाला दिन, एंड आपका और हमारा फेवरेट दिन है ये. तो अब आखिरी गीत जो हम सुनाने वाले हैं इस आवर में, दैट इज़ फ्रॉम द फिल्म बेताब, विच वॉज रिलीज इन 1983, लता मंगेशकर एंड शब्बीर कुमार की आवाज़ में.
4: बादल यूं गरजता है.
1: यस, बादल यूं गरजता है. एंड इसके बाद में हम बढ़ेंगे 9 o'clock की न्यूज़ की तरफ. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर.
0: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे, लाइका गोल्ड. This is Ash Winnie on Leica Gold.
3: Leica Gold.
5: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
6: I hope Major Nena, hum log waqt par pahunche.
7: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
8: Jaam chalne lage.
7: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
10: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
13: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
14: The Evening Show with Ashwini.
15: Laika Gold, part of the largest Asian commercial radio network in the UK.

0: Welcome. This is the third and the akhri hour of the evening show with Ashwini on Like a Gold Radio in London and Like a Radio in Greater Manchester. इस आवर का आगाज हमने किया था सोनू निगम एंड सपना मुखर्जी की आवाज में दिल से सतरंगी, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. एंड सेकेंड था किशोर कुमार की आवाज में सनम तेरी कसम से देखता हूँ कोई लड़की हंसी. थर्ड आवर है तो गजल या कवाली में क्या सुनाने वाली, जरा बताइए जल्दी जल्दी आपका अंदाज क्या है. मौसम ने ले ली है करवट, होने वाली है ठंडक और बादल तो नहीं गरज रहे लेकिन बारिश मेरे ख्याल से आ ही जाएगी, है ना. फाइनली हमारे जो है अच्छे खासे ठंडे दिन आ रहे हैं. उफ, हाउ मच आई मिस्ड माय जैकेट्स. आई एम अ पर्सन हु लव्स ठंडा वेदर मोर देन द गर्मी वाला वेदर. आई नो विटामिन जो डी है हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन क्या करें, सहन नहीं होती है धूप बिकॉज हमारे घर उस लायक बने नहीं है. हमारे घर तो बने थे हीट सोक इन करने के लिए लेकिन समर्स के लिए नहीं बाबा. काफ़ी हेक्टिक रहा ये समर आपके लिए हमारे लिए. एंड होपफुली नेक्स्ट समर तक सबके घर में, अगर जिनके घर में एसी नहीं है वो एसी लगा लें बिकॉज आई थिंक वक्त का तकाजा है कि हमारे यहाँ पे अब एयर कंडीशनर्स आ जाए. नेक्स्ट ट्रैक जो सुना रही हूँ आशा भोसले की आवाज़ में लोफर फिल्म से, 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. अब ये गीत किस पे फिल्माया गया था अगर आप लिख कर भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजिए.
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127.85 इंडियन रुपीस. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: जी हाँ, आप लोगों में से कई लोगों ने आंसर सही दिया है। ये गीत फिल्माया गया था द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस मुमताज जी पे। ओके, तो क्या आप जानते हैं कि जो आपके घर में स्पाइडर्स होते हैं, अब घर में अभी फिलहाल जिस तरीके से मौसम हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की कि उनके यहाँ पे काली चींटियाँ ब्लैक एंट्स दिख रही थी। और घर में हमारे ना ये छोटे छोटे क्रीचर्स जो हैं ये होते ही रहे। तो साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि टिपिकली होम शेल्टर्स में ना 50 से ज़्यादा इंडिविजुअल स्पाइडर्स एक्चुअली पाए जा सकते हैं। एंड ये जो स्पीशीज हैं ये इंडोर लाइफ जीते हैं, यानी कि इन स्पाइडर्स को आपने अगर पकड़ के उनको सोचा कि अब चलो इनको बाहर डाल देते हैं, इनको वी वोंट किल देम, लेकिन अगर बाहर घर के बाहर उनको फेंक देते हैं ठीक है भाई, जिएंगे अपनी ज़िंदगी। सो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि जो इंडोर स्पाइडर्स होते हैं वो बाहर की लाइफ के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते। एंड उनके लिए और कुछ नहीं, वो एक डेथ सेंटेंस है, क्योंकि बाहर की हीट या ठंड के साथ में वो कोप अप नहीं कर सकते। साथ में इंडोर उन्हें रहने की इतनी आदत हो जाती है कि बाहर जाके जो हंटिंग होता है अपनी लाइफ जीने के लिए, जो भी उन्हें खाद्य पदार्थ चाहिए वो उसमें स्ट्रगल करते हैं कई बारी। तो ये जो स्पाइडर्स हैं आपके घर में, अभी लोग कहेंगे कि भाई स्पाइडर्स घर में है तो क्या उन्हें हम बाहर ना फेंकें, और घर में तो हमारे लिए तो नुकसान कर रहे हैं। सो ये जो एक साइंटिस्ट जब ऐसी इन लोगों पर रिसर्च करते हैं ना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये पहली चीज सोचने में कि किसके एक्चुअली ये किसकी आइडिया होती होगी कि हम इस चीज़ पर रिसर्च करें और इसके बारे में लोगों को बताएं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में शायद हम इतना ध्यान ना दें, पर ये जो सर्वेज होते हैं या रिसर्च होते हैं इसके द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है। अब आपके घर में जितने भी आपको स्पाइडर्स दिखेंगे, अब आप सोचेंगे क्या करें कि ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल, ओ मेरे भाई। लेकिन मुझे नहीं पता इसका हल क्या है, मुझे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैंने सोचा आप सबको ये चीज़ मैं बताऊं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone, even people who know nothing about investing. Like Keith, who thought dividends were a boy band. Jessica, who thought compound interest was a prison dating app. And Sue thought FTSE 100 was a bit of under the table fun, which surprised her accountant.
3: Oh, no.
2: If we can make investing feel good for them, it's no wonder Which have recommended us 8 years running. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
4: Like a Gold.
5: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
6: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel can take you there.
10: Southall Travel, at all protected.
11: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
12: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
11: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
12: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
11: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
13: high appreciation
14: in Dubai.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
4: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
10: Four beers, please, garçon.
4: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
15: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: यू नो हमें ऊपर वाले को हमेशा शुक्रिया कहना चाहिए, इन ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए, क्योंकि जब हमें ज़िंदगी में ऐसे मौके मिलते हैं कि जिस चीज़ को लेके हम बड़े पैशनेट हैं, दीवाने हैं, और वो चीज़ हमें करने मिलती है ना, तो बस दिल में सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड होता है। एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील कि यहाँ पे इस हॉट सीट पे आके बैठना, आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना, आप लोगों से इतना प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलना, एंड बिल्कुल चेरी ऑन द केक हमेशा होता है इतने ब्यूटीफुल ट्रैक्स लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, इश्क पर जोर नहीं, कितना सुंदर गीत था ये। मतलब जनरली बाकी सब चीज़ों पे हम लोग पैर थरकाते हैं, डांस करते हैं, आप हमेशा मेरी क्लिप्स देखते हैं जो मैं अपने इंस्टाग्राम रेडियो वाली अश्विनी पे डालती रहती हूँ, कि जब जो पहला गीत इस शो का होता है, मतलब हर रोज़ जो पहला गीत होता है उस पे मैं एक क्लिप बना के अपने इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ, आप लोग देखते हैं, आप लोगों को बड़ा मज़ा आता है, आप लोग सब कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। लेकिन इन गीतों पर ना बस आंखें बंद करके मध्यम लाइट जो है एंड महसूस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि कई बार वो हम स्माइल कर रहे हैं या गीत गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, कभी कभी जस्ट महसूस करना। एंड आई थिंक दिस सॉन्ग डज दैट ब्यूटिफुली फॉर ऑल द लिसनर्स अराउंड। एंड व्हेन सिंगर्स लाइक लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, इनकी जब आवाज़ हमें सुनने मिलती है ना, तो इट्स अ ट्रीट यार। मतलब इससे अच्छी ट्रीट और क्या ही हो सकती है ज़िंदगी में, है ना। सो इसके बाद में जो ट्रैक आपको मैं सुनाने वाली हूँ, दैट विल बी फ्रॉम गाइड फिल्म, लता मंगेशकर की आवाज़ में। चलिए थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और थोड़ा सा हल्का सा उत्साह आप सब में हम अब पिरोते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड, travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Search is changing.
5: Customers aren't just using Google anymore.
4: They're asking AI.
5: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
4: One business, one recommendation.
5: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
4: Will your business be the answer?
5: Or the one that got left behind?
4: The future of search has already started.
5: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
4: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027193 4।
6: Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway Southall and 47 Green Lane Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. The Leica Radio Network, the perfect soundtrack for a British summer heatwave. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.05 इंडियन रुपी, 374 पाकिस्तानी रुपी, 451.65 श्रीलंकन रुपी, 166.6 बांग्लादेशी टाका, 88.51 अफगान अफगानी, 174.24 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर, 63.25 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LIKA Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £101.49 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही, एक बार जरा टाइम चेक कर लीजिए. इट्स 42 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विसेज जरूर सुनिएगा. लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. फील गुड वेंसडे मनाया आपने और हमने साथ में. आज आपको गजल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, मैं सुना रही हूँ आप सभी को कव्वाली. और उसके पहले एक और प्यारा गीत. अपने आपका खूब ख्याल रखिए. कल थ्रिलिंग थर्सडे मनाएंगे आप और हम साथ में. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
4: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: This is Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
2: साफो ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड। सप्टेम्बर महीना मा हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
3: तमे बधा पुरुष हो तो लग्ने कुवारा हो छो।
4: ए तमे स्त्रीओ अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगवानो बंद करो।
2: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जान मा। हवे राइसलीप, पॉटर्स बार, ईफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आजे ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो।
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocenter.org.
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
9: Relax, I've booked the Uber already.
8: How? My roaming isn't even working yet.
9: I switched to Simsy before we left London.
8: Simsy? Since when are you the tech expert?
9: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
12: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

ताली ताकत धुमी ताकत ताली ताकत धुमी ताकत डाला आम ताकत धुमी ताकत ताजी के नज़र ताकत नाकत ताकत धुमी ताकत नाकत नाकत धुमी ताकत नाकत नाकत धुमी ताकत नाकत नाकत जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को गुदारी दामु तारी के डे तारी ता जग तारी ता जाने जाने को गुदारी दामु तारी के डे जम तारी जग तारी ताकत नाकत ताज जिन्दे ताज जिन्दे ताज जिन्दे ताज जम तारी जग तारी जाने जाने को

छेने हटूंगा वही हिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं बुद्धि को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
1: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
0: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।